0: सब देवता की शोभा बनी। नानक हे गुण नाम सुखमनी।
1: ओंकार सतगुरु प्रसाद उकार खासे दस्कत का पातशाही दसवीं। अकाल पुरख की रक्षा हमने, सर्वलोह दी रक्षा हमने, सर्वकाल जी दी रक्षा हमने, सर्वलोह जी दी सदा रक्षा हमने।
0: बंत्र

फते गाज के जयकारक जावे सो निहाल जावे सत श्री अकाल गुर बरी अकाल देव तेग फते गुरु पंथ खा।

जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि पृच्छस्तु हि पतस्तु हि चितं भजस्तु अङ् भजं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि।

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गदहा विभूत दारिग दुआ मसान वास करे करत है घुग मट वासी लग डोलत उदास प्रेग तर वर्ष दीव मोन साधी मरत है बिंद के सदैया ताहि हिज की बड़िया देत बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैस के तरत है भूत बन चारि छेत छाना सब दूध तारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के बचैया धन लोभ के तजैयत तगौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंच की बड़ैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेत बड ज्ञानी तेनो जानी पै बखानी नाहे असने प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सो चिरैया कह पखानी है फल के भचैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदि सफिरैया ते भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जेहे ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धिन चारि लिखि गस नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद भावे पूजत न ताहे जाके राख रहियत है विश्वपाल जगतकार दीन दयाल बैरिसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पै सहत है।

नाचत फिरत मोर बांधत करत घोर धाम नियन एक भाव कर करत है। चंद्रमात शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या अनत है। ज्ञान के विहीन काल मांस के अधीन सदा जोगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा अर विषण कित वेद ओ पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित असुनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीरे ओ पिकांबर कित गण न परत एत भूमि हित होए के फिर भूमि ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मानसे महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली शरद्रु जोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिजदे करे अनेक तोप जी कपट फेस बोस दी अनेक दानी वावत है। शीस को कहा भयो मल्ल जोप काढ़त अनेक डंड सोतन डंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जोप डार रहो ऊर्ध मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कस पावे जगदीस को शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सुख सौ आंख को चरैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भोग सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्ष न सो माटी को भछैया बोल पूछ लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करे हुई करत है। एक पाए ठांडे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरा की बने कब हूँ सन्यास भेष बान के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंजर औगत अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाकुठार हंसो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाई है तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव भूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गदरांड की बरत कर पता

रहीम होई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही के सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहुरा मसीद सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पयाने को फरमाओ है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

कोट आग उठ न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनुक फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ माछ कहते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच बच को करेंगे भज, के तक प्रत्यच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहा थल कहा, गगन के गौन कहा, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोवत मरत, केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग बासी केत मदीना मक्का निवासी, केत उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केत भू में गड़त, केत सुहा पे चढ़ में उड़त, केत जल एक जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर, दानो बड़े बोध हर, बोध को प्रबोध हर, जाप सी घस हर, चंदन लगाए हर, चोचार बूझ हर, वाहन चढ़ाए हर, लापसी गा हरे गोरन बनाए हर, मड़ी मटली बहारे भीतर लगाए हर, छापसी गाए हर, गंधर्व बजाए हर, किन्नर सब बच हर, पंडित तप

सने हंसनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथ चित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग फेखंग न सतरंग न वितरंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जोनि अक्षयादय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सुखंग भय निर्विखादंग

देह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औखदी रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हों कहूं जोग विद्या धरे तापसी हों कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हों कहूं जच विद्या धरे मानवी हों कहूं राजसी हों कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूप।

देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज

चर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख कहूँ बेदरितं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ शैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज

न रेख रुखं जे ताप न साप न सुख सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात वितं जेह रचयं छत्री छत्र छितं जेह राग न रेख न रोग भणं जेह द्वैख न दाग न दुख गणं जेह अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रजता।

जया तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्री सिंधुरु बिंद नकिंद नकंग श्री जाच गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव सराध वितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जच्छ जुअंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास कियो फल फूल कली ओ मेरा आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय शत्रु उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे

जन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अंज अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद भेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधो मुख ताप तप कई गल्पन लो तब ताप कर नई नायक कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सफेत जय एक चित्त कृपा निध को जब है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति वेद उचारद सार सुति जो वारस के जस के रस है ते भूल न काल फंदा फस है त्व प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानी है अभूत भूत है सदा गंज गंज मानी है अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है नराग रंग रूप है नरोग राग रेग है अधो गताग दग है अभूत ब्रह्म वेग है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेक सेख भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानी है सदीव सर्व ठौर में विशेख अनमानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण ओ कुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आद देव है कहो सु कैसे पाइये जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न

मतलब है ना नर है ना नार है ना चोर है ना साव है ना साह को कुमार है, न नेह है न गेह है न देह को बनाव है, न चल है न छिद्र है न चाल को मिलाव है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाव है, न छल है न छिद्र है।

है, ख्याल खंड रूप है, छेद है, अभेद है, न रंग है, न रूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, गरीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेख

अनंत आद अंत ना जानिए अभिखात देव दुरंत। देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब, सनक औसन केस नंदन पाव ही न सेब, जस किन्नर मछ

वरण चिहना चक्र जागो चक्र चिहना कार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन श्रभ दाता श्रभ ज्ञाता श्रभ भू को बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मय जय गाथ भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत नाद श्रीवत परम पुरख भंज धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्न।

आद वृते जचरा सुन मारण पतित उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो से मैं खासुर मर्दन रम्भ कबर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निगंडन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र बिंदुन सण महक मथे दान प्रहारन नरक निवारण।

खंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दाम नी दमंकन दुजा फरंकन फणे फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो सीम खासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुछम निवासन।

सुन मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोघ निवारण दुष्ट प्रजारण सदृष्टोपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण

चाचर चमकार छिछुर हारण धूम धुंगारण द्रप मथे दाढ़ विवृदंते जोग जयंते मर्ज मथंते गूढ़ कथे कर्म प्रणासन चंद प्रकाशन।

केसरी प्रवाह है सुदसन्ना है अगमथा है एक वृते जय जय हो जी मैं खा सुन मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर्म

अंट का विराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे गिल विग भाजे सुखोप राजे मधुरंग दुर्जन दल दच्छे मंथन रिझे सब न भजे रूह रणंग जय जय हुसी मै खासुर मर्दन चंड चक्रदन आदि गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मै खासुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आदि अनंगी अगाध गते बृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदि वृते सुर नर प्रतवारण पति दो धारण दुष्ट

डुग डुगी दमंगे बाघ भुवंगे हुजा फरंगे सोध गते जाय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुमारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पावान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे।

वर्धन बिडाल वधे सरधार विवरखंड दुर्जन धरखंड अतुल अमरखंड धर्म धुजे सुम्भ न पातन सुम्भ मथा सुन मर्दन आद अनिल अगाध कथे।

दादा दुरंत दुख दोख रहत जे नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच की नो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै के लखाए अंशिज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै अना सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अच्छ स्वरूप करुणा निधान कावल कृपाल दुख दोख।

उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेग नहि रंग राग अंछे जतेज अनभिजदाग। जल थल महीप बंत दुरंत जेह नेत नेत निस दिन उजरंत पायो न जाय जेह पैर पार दी नान दुख दहता उदार। कई कोट इंद्र जेह पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जेह नेत नेत

भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सफै सिर न्यावै पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न से रुमनारिक से सब हु मिल गायो वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सफै पजहारे भेद न पाए सके अनभेद को खेद तह अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे आद अनाद अगाध अभेग अद्वेग जप्यो तिन ही कुल तारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरे कर भेद सबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख का

अत्र के चलैया छेद छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसार के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वे न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव गोर कर तेज गुण गाव तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना के देख बांधे आरब के आरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने गंधारी कुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मराठा मंगेली तेरी मन सो तपस्या करे देड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेल वीर भंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस ने

अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरावत छाज कैसे छतरा नेर छपा कर कैसे छप कालिंद्री के कूल के हंस निश सिहारूम हीरा सिंह हुसनाबाद गंगा कैसे धार चले सातो सिंधु रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे।

रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तास है।

न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भव करिया उडे उड आवे सै कुसा तिस पाछ बचरे छरिया।

हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सभय तुम घावो, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभय कर तारा, मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आज संघरिय।

चुन चुन सत्र हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास नवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस दुज ज्यों करी यह रक्षा, राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा।

नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो।

सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकण को सेव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह बद कियो, घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर या स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घाट घाट के पट पट की जान।

संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे सुदुज तव शरण।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास, एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दिया वेधाय। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कलगीधर जी पिता पंथ देवाली। अमृत के दाते शमशेर बहादुर जी। सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां जी दे आत्मक स्वरूप धन।

साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारियो चाली मुक्तियो सर्व शहीदो मुरीदो सचियारियो प्यारियो सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, तिसे अगे नानका खले कीच अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सर्व समु खालसे जी की अरदास, श्री वाहिगुरु जी के पास जहां जहां गुरु खालसा जी।

0: चला
1: सबके सिमरन कमल विकासन
0: सबके सिमरन सुनकार
1: सुप्र सिमरन कांत न पार
0: सिमर से जन जन को प्रमया
1: नाना जिन जन सन्नी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रकटाए
1: हर सिमरन लग वेद उपाय
0: हर सिमरन वैसे जति दाते
1: हर सिमरन नीचों कुन जाते
0: हर सिमरन नारी सब धरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन क्यों सकल

0: नाम की तुम ऊपर शाम
1: जात्रिका मतु जा करके
0: नानक हर हर अमृत बरख
1: भगत जना के भरतन नाम
0: संजना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओर
0: हर के नाम उदरे जन कोट
1: हर जस करत दिन रात।

0: प्रकार किए बो
1: जतन बो रतना
0: वीर कटाए हो मैं करत
1: वर्तने करे बो पाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव
1: महा उदास अपी सरथी है
0: अगन माए हो मत परा
1: पानी का सब है वर कुम दान
0: न्योली कर्म करे बो आस
1: जैन वा संजम असादन
0: निमक निमक कर सिर कटावे
1: नौपी हो में मेल न जावे
0: के नाम संसर कृष्णा ही
1: नानक गुरमुख नाम जब कच पाए
0: मन कामना तीर दे छुटे
1: कुमाना मन ते होटे
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की मैल न तंते जात
0: इस देही को वो साधना करे
1: मन ते कबो न बिख्या टरे
0: जल धो वे बो दे अनी
1: सुध कहा होए काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा

0: जन को ब्रह्म दर्श प्यासा
1: नानक ताके भल भल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: सत्संगा का मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गनिए सबते ऊंचा
0: ना का मन हो सगल की
1: हर नाम तिन गढ़ गढ़ जीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: बेके सगल से साजना
0: दुख दुख जन सम दिशते
1: नान पाप नहीं ले पाप
0: निर्धन को धन तेरो नाम
1: नितावे को नाव तेरा ताओ
0: माने को प्रभ तेरो माओ
1: सगल कटा को देवो दान
0: करण करावण हार स्वामी
1: सगल

0: जह प्रसाद तरूपर सुख बसे जह प्रसाद पीवे शीतल जला
1: पावक कमला
0: जह प्रसाद पोगे सबर
1: सागर सामग्री संसार बसा
0: तीने हस्त पाव करने

आठ पैर सिमरत इस रसना नानक सदा ध्याइए ध्यावन जोग तिसे त्यागत अवल लुभावे मन आठ पैर ताका जस गावी जय।

0: मन सुख पावे हर जस कहते
1: प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
0: मन सरनी पर ताको प्रभु ताके
1: प्रसाद तुझको न पहुंचे
0: मन सास सास सिमरो प्रभु चे
1: प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे
1: प्रसाद आभूषण पहरे
0: मन ति सिमर को आलस दीजे
1: प्रसाद अस्वस्थ
0: स्वारी मन ति प्रभु को कबु न बिसारी
1: प्रसाद भाग मिलक धन
0: रात प्रभु अपने मना उठत बैठत सत से ध्याई
1: जो एक
0: इया हुआ नानक तेरी रखे
1: प्रसाद करे पुण्य
0: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
1: प्रसाद तो आचार भी वाई
0: तिस प्रभु सास सास चितारी
1: प्रसाद तेरा सुंदर
0: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: प्रसाद तेरी नीकी
0: जा सो प्रभु सिमरो सदा दिन रात
1: प्रसाद तेरी पत्र है
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद देखे बिस्माद जय प्रसाद सुख सहजे बसना
1: प्रसाद हसत कर चले
0: जय प्रसाद संपूर्ण फले
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे
1: सब रब त्याग और कत लागो
0: गुरु प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू प्रकट संसार
0: जिस रब को मूल मनो विसार
1: जय प्रसाद तेरा परता
0: रे मन मूर्तता को जाप
1: जय प्रसाद तेरे कारण
0: इसे जान मन सदा हजूर है
1: पावे
0: सारे मन मेरे तू तो से हो राच
1: प्रसाद सबकी गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाए जपे सुना
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु दयाते कमल विकास
1: प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दयाते मत उत्तम होए
1: निधान प्रभु तेरी मन आप

0: साथ के संग मुख उजल होत साथ के संग मिटे अभिमान
1: साथ के संग प्रगटे सुज्ञान
0: साथ के संग बूझे प्रभ नेरा
1: साथ संग सब होत निवेरा
0: साथ के संग पाए नाम रतन
1: साथ के संग एक ऊपर जतन
0: साथ की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साथ की शोभा ब्रह्मा है समाने
0: साथ के संग अगोचर मिले
1: साथ के संग सदा पर फूले
0: साथ के संग आवे बस पंचा
1: साथ संग अमृत रस पुंचा
0: साथ संग होए सबकी रहन
1: साथ के संग मनोहर बहन
0: साथ के संग न कतहु दावे
1: साथ संग अस्तित्व मन पावे
0: साथ के संग माया ते भिन्न साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापुनीत
0: साध संग किस्यो ने

0: साथ बढ़ाए
1: नानक साथ वो बने आए
0: साथ के संग न कबू दावे
1: साथ के संग सदा सुख पावे
0: साथ संग बस्ता गोचर ले
1: साधु के संग अजर सहे
0: साथ के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुँचे
0: साथ के संग दृढ़े सब धर्म
1: साथ के संग केवल पाए ब्रह्म
0: साथ के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साथ के संग सब कुल उधारे साधु के संग शोधन पावे
1: सबको बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप पलाये
1: साध संग अमृत गुण गाए
0: साध के संग सब थान गम
1: नानक साध के संग सफल जना
0: साध के संग नहीं कच घाल
1: बस बेटा तो निहाल
0: साध के संग ना कलकुत कलुकत हरे
1: साध हर मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: साध के संग ना मिटता जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे
1: नानक उदरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाए
0: साध के संग ना मनते बिसरे साध के संग लगे प्रभु मीठा
1: साधु के संग घट घट डीठा
0: साध संग भय आज्ञाकारी
1: साध संगत भय हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध बैठे संजो
0: साध की महिमा वेद न जाने।

0: रूप न पेखे नेत्र
1: साथ
0: करण सुने काहू की निंदा
1: सब ते जाने आपस को मंदा
0: प्रसाद भिक्षा पर हरे
1: मन की वासना मनते डरे
0: इंद्रिय जित संयुक्त रहते
1: नानक और मदे को ऐसा प्रसन्न
0: सो भज सब प्रसन्न।

0: कई कोट पंखी सरप उपाय,
1: कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
0: कई कोट पवन पानी बेसंत,
1: कई कोट देश भू मंडल,
0: कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र,
1: कई कोट इंद्र से छत्र,
0: सगल सामग्री अपने सूत्र धार।

नानक जी में देख बनाई करण करावन सर को ज्योतिष पावे सोई कुंदियो तब सो खरक रंग से तब

कारी नीच का साजा कबो बुला बुला कावे मोर प्रसाद नानक सच कहे कबो मोन तारी लावे ध्यान कबो सिख साधक मो ज्ञान अनक जो मन में भर मिया जो प्रभ पावे दिवे न चावे नानक दूजा वर न कोए उस्ताद दे बहु नावे।

0: बृहस्पति
1: जिसके अंतराजमान
0: सो नरक पाती हो स्वान
1: जो जाने में जो बनवंत
0: सो वस्ता का जन
1: आपस कऊ कर्मन कहावे
0: जन्म रे बोझो रमावे
1: जो करे गुमान
0: सो मोर कंदा ज्ञान
1: कृपा जिसके हृदय गरीब सावे
0: नानक या मुक्ता के सुख पावे
1: मनता हुए करे घर पावे
0: हे समान को संग न जावे
1: कर मानक ऊपर करे
0: पर भीतर दाता होए मेरा
1: सत्य आप जाने बलवंत
0: किन में हो जाए बस मंत
1: से न बदे आप अहंकार
0: धर्म राय तिस करे कुवारी
1: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
0: सो जन नानक दर गए परवान
1: कोट कर्म करे उदारे
0: धर्म पावे सगले बिठाले
1: एक तपस्या करे अहंकार
0: नरक जुरत फिर भी अवतार
1: जतन कर आत्म नहीं
0: रहे हर डर के को कैसे गवे
1: जो भला
0: कहा निकट न आवे
1: जाका मन
0: नानक ताकि निर्मल सोए
1: जाने मुझसे कुछ होए
0: कब इसको सुख ना ही कोए
1: जाने मैं कुछ करता
0: तब लग रख जो मैं फिरता
1: तारे कोई बैरी में
0: तब लग ने चन्ना ही जीता
1: मोह मगन संग माए
0: तब लग तरम राय दे सजाए
1: पाते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहस कटे लकट उद्धावे
0: जपत न आवे माया पाछे पावे
1: भोग भिक्षा के करे
0: न तृप्तावे कब कब मरे
1: ना संतोष नहीं कोई राजे
0: सुख मनोरथ बिते सब काजे
1: नाम रंग सरब सुख होई
0: बड़ भागी किसे प्राप्त होए
1: करन करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक जाप
1: करावन करने
0: हाथ इसके हाथ का विचार
1: तैसा
0: आपे आप आप प्रभ सोए
1: कुछ कीनो सो अपने रंग
0: सबसे दूर सबो के संग
1: जे देखे करे
0: आपे एक आपे अनेक
1: न बिन से आए न जाए
0: नानक सदी रे समाए
1: आप उपदेश समझे
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसको करने हार
1: ते बिन कहूं किस होए
0: तान तनंतर के सोए
1: चलित आप करने
0: हार पुत्र करे रंग अपार
1: मन अपने
0: नानक की मत न जाए
1: सत्य सत्य सत्य प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बख्याने
1: सच सच सच सब कीना
0: कोड मदे किने मिले चिना
1: भला भला तेरा
0: रूप सुंदर अपार रूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: गट गट सुनी

0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी,
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रति,
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीता,
0: ठाकुर को सेवक जाने संग,
1: प्रभु का सेवक नाम के रंग,
0: सेवक को प्रपालन हारा,
1: सेवक की राखे निरंकारा,
0: सो सेवक जिस दया प्रभु धारे,
1: नानक सो सेवक साथ साथ समारे,
0: अपने जन का सेवक ढाके,
2: अपने सेवक
3: अपने सर पर रखे,
0: अपने जन का पर्दा ढाके,
1: अपने सेवक की सर पर रखे,
0: अपने दास को देव डाई,
1: अपने सेवक को नाम जपाई,
0: अपने सेवक की आपत्रा

0: कहो भूल ना पहुँचत परानी
1: अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणे
0: निराहार निर्वैर सुखदाई
1: ताकि कीमत किने न पाए
0: अनेक भगत बंधन नित करे सत बलिहारी सत गुरु अपने
1: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने
0: यो रस पावे।

0: नानक नाम रते सुख होए
1: सतगुरु ते निर्मल मत लई
0: सेवक कीनो सदा निहाल।

0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमृत लाले रतन
0: सुनत कमावत हो तो
1: आप तले लोके निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लगा रंग
0: जय जय सबदे अनाहद।

सतगुर प्रसाद जल तल महल पूरिया स्वामी सिरजनहार अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार पौड़ी एकम एक।

ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछु होए। चार कुंट द दिस ब्रह्मियो तिस बिन अवर न कोए। वेद पुराण

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। पाशाही दसी चौपाई बार सुर का काट समाता
2: जगत के नाथा
1: दो
2: काट दयो।

सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ गुरु का लंगर तैयार है सबने छक के ही जान की कृपालता करनी जी। सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु

भैव च गंगड़ा बेगार भैव च धरती दबी भार भैव च फ्रैशर भार भैव च राजा धर्म दुबार भैव सूरज भैव चंद कहो करोड़ी चलत न अंत भैव शुद्ध बुद्ध सुरनाथ भैव च आडाने आकाश भैव जोत महाबल सूर भैव च आवे जावे पूर सगलिया पाव लिखिया सिर ले नानक निर्भव निरंकार सच एक महत्व।

लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्ष्मण सुधा मोरन में छुट्टे पर लक्

कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ रूपी पार कुड़ मिया कुड़ बीबी खप होए खार कुड़ कुड़ा ने हुनका विसरिया करता किसना लिखी चै दोस्ती सब जग चलन हार कुड़ मिठा कुड़।